0: जियो है जित हरिया सब कोए, सोतक क्यों कर रखी है सोतक पवे रसोए, नानक सोतक एव ना उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जम पुर जाए महला पहला। सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए, जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवै जाए, खाना पीना पवित्र है दित्तों रिजक संभाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक ना पौड़ी। सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईया समिलत नदरियाईया, जा तिस भाणा अमन मसाईया, कर हुक्म मस्तक हथ धारियो विचों मार कड्डियां पुरियाईया, सहत उठे नौनित पाईया नौनित पाईया नौनित पाईया।
2: पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईया सहमिले तनदरी आईया, जात सपाणा त मन वसाई, कर हुक्म मस्तक हाथ धार विचो मार कटियां प्रिया आईया, सत ठेनुन तपाईया सत ठेनुन तपा।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमित तोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गण जय त्रिभवन महीप सुर नार असुर नेत नेत वन त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कन हर बूंद बसौ रोमावल कुसुम बसंत गणंत नायाव राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के काव जन पल उन्हें जो गावै पल्ले अमर दास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै पल्ले अमर दास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले रख हो रखन हार दयाला नानक करके गोले हौ आया दूर हों चल कर मैं तकी तौ शरणाए जियो मैं आसा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय हुआ सिफत खसम दे नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया
ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ

गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाय, फिर मिलन न पाए नी।

पौड़ी वड़ी वड़ा अपार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक न जापन करतुबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वस तेरा कर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर

0: उपजर सर्व कला भरपूर दिसै जतकता नानक दासन दास दया गै बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दया खेलै सगल जगत

महत दिवस रात दुदाई दया खिले सगल जग चंगियाइयां बुरियाइयां बच्चे धर्म दूर।

0: दुख दारू सुख रोग भया जा सुतम न होई। तू करता करना मैं नाही जाहु करीना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहेब सिमत सवालियो जिनकी तिसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया।
1: सो धन्यवाद।

कोय। तू कर कर वेखह जानह सोय, जन नानक गुरमुख प्रगट होय। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पई ले निवासा। पाणी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चल। हम देखा तह डूबी आले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाउ जप तप

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेयो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहौ सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौने चौने सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ट सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा,

सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखानियो। दोहरा

0: فاتح
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नौ ने दया वैताय। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा

ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी।

अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाउ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाउ, सतगुर सेती रतिया दरगह पाई ठाउ। कहो नानक कृपा करी जिस नौ एह वाथ दे, जग मह उत्तम काढ़ी है

रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो भीखन दुए नैन संतोखे जह देखा तह सोई रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो भीखन दुए नैन संतोखे

0: रंग परंग नेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सबके जाला सब किस तेरे बस तेरा करपला तेरे करनंद वदाई तुद करमान महता ते जपना पजर सर्व कला परपुर दिसे जत कता नानक दसन दास तुदे आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत्त महत दिवसरा।

हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत शाद बिख बिख खाई, माया मो परम पै फूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसमदी, नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावी सा। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दशाह। जिस पास बैठियां

जल की पीतर पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा, जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा।

बंके बाल पाग सिर डेरी एह तन होए गो भस्म की ढेरी उच्चे मंदर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी उच्चे मंदर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा

0: अपन विचार हम नरक स्वर्ग अवतार हम जसे हम छुवे हम भरिया हम तो हम जाति जसी कोवै हम मूर्ख हम सियाणा मूर मुखी सारना जान हम माया हम छाया मैं कर कर जंतु पा हम मैं पूजै तां दर सूजै ज्ञान मूणा कत कत लूजै नानक गुंगे लिखे अले जिया वेखै तिहा वेख महला दूजा
1: हमें हा जात है हमें कर्म कमाए हमें ही बंदना फिर फिर जूनी पा हमें कितों

पौड़ी सेव कीती संतोख ए जिन सचो सच ते आया ओनी मंदै पैर न रखियो कर सो कृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवै चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ बैसनहा कुड़ सोयना कुड़ रूपा कुड़ पहनहा कुड़ काया कुड़ कपड़

दुख दारू सुख रोग भया जस काम ना हो, तू करता करना मैं ना ही जाओ करी ना हो। बलहारी कुदरत।

गावे जम दगन पारथ रामेश्वर, कार कुठार रग तेज हरियो, उदो अक्रूर बिदर गुण गावे, सार बातम जिन जाने हो, कभी काल

संतनां अवर न काहू जाने बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ।

रामदास होई सहाय, हर जन हर गोबिंद नु सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनो निध्या बताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय।

इतने तो एक बार सुचे ना किए बैंज पिंडा तू सुचे से ही नानका जिन मन वस्या सोई पौड़ी तुरे पलाने पौने।

जेकर सुख मन सबता सुख हो तो ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अनके जिया बाजना को पहला पानी जियो है जे तरिया।